राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् गंगादि पुण्य सरितः प्रणयाति बद्धाः सद्रत्न हेम जल कुंभ शतैरिदानीम् त्वाम् स्नापयन्ति विधिवच्च जयोग निद्राम् श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् मंदार पुष्पदधि कुंकुम।

सर्वदाम सर्वशब्दवाच्याम सर्वशब्द प्रवृत्ति निमित्ताम सर्वगुणादि परिपूर्णतमाम सर्वदेशादि दूरा सर्वाचिन्त्याम सर्वोत्तमाम सर्वेश्वरा सर्वात्यंत विलक्षण स्वगत वेद विवर्जितत्वादिना भगवद्द्रष्टॄणाम अभिमानादि सर्वदेश दूराणाम असूयेर्ष्याद्यशेष मनोदेश निवर्तकानाम नित्यापरोक्षीकृत रमायुक्ताशेषवद्रूपाणाम अतएव विलीनाशेष प्रकृतिबन्धानाम अतएव दूरोत्सारितादेश निष्ठानाम अतएवाशेषभक्ताशेष निष्ठ निवर्तकानाम प्रणवोपासकानाम अस्मदादिगुरूणाम श्रीमदानन्दतीर्थश्रीमच्चरणानाम् अन्तर्यामिनी अनिरुद्ध प्रद्युम्न सङ्ग्रहण वासुदेवात्मक श्रीमध्ववल्लभ श्रीलक्ष्मी वेदव्यासात्मक अण्डस्थितानन्दरूपावयव गुणक्रियाजात्यवस्थाविशिष्ट रमायुक्त क्षीराद्विशेषदायी श्रीपद्मनाभात्मक अण्डाद्बहिः अभिव्यक्त शुद्ध सृष्टित्वेनाभिमत श्रीचतुर्मुख मुख्य प्राणोपास्यत्वाद्यनेक प्रयोजनकानन्दानन्द रूपमूलभूत तथा अशेष जगत्पालन प्रयोजनक शान्तिपत्ति निरुद्ध मूलभूत अशेष जगत्सृष्टि प्रयोजनक कृतिपति प्रद्युम्न मूलभूत जगत्संहार प्रयोजनक जयापति संकर्षण मूलभूत तथा स्वस्वासमग्रयोग्यताभिज्ञ परमानुग्रहशील भगवत्प्रेरित चतुर्मुखादि सद्गुरोपदिष्ट स्वस्वायोग्य भगवद्रूप गुणोपासनया संजात स्वस्वायोग्य भगवद्रूप विशेष दर्शन भोगाभ्याम जिनिष्टानिष्टसंचित प्रारब्ध लक्षणाशेष कर्मणाम स्वस्वायोग्यतानुसारेण संपूर्ण साधनानाम पूर्वकल्पे ब्रह्मणा सह विरजानदी स्नानेन तिक्तलिङ्गानाम् तथा विनिष्टावशिष्टेष्टावेद प्रारब्धकर्मणाम् प्रलयकाले भगवदुदरेव सदाम् आनन्दमात्रवपुषाम् तदनुभवरहितानाम् स्वस्वायोग्य भगवद्रूपविशेषध्यानरतानाम् सृष्टिकाले भगवदाज्ञया भगवद्द्राग्बहिर्निर्गतानाम् श्रीश्वेतद्वीपदर्शनम् निमित्तीकृत्य प्रदानावरणभूत स्वेच्छाप्रसरणेन स्वस्वायोग्यानन्दाविर्भावलक्षण मुक्तिप्रदानप्रयोजनकमायावति श्री वासुदेवात्मक लक्ष्म्यात्मक प्रलयाद्यस्त श्रीवटपत्रशेषदायशेष जगदुदराशेषमुक्तनाभिदेशोर्ध्वभाग कुक्षाख्यदेश त्रिविधाशेष संसारिनाभिदेशाखिल तमत्पतितनाभ्यदो भागदेश श्रीभूम्यालिङ्गित कालादिज्येष्ठकपरमाण्माद्यशेष कालावयवसृष्ट्यादिकर्तृशेषनामक परमपुरुषनामक श्रीचतुर्मुखमुख्यप्राणोपासित चरणानिरुद्धादिचतुरूपात्मक गायत्रीनामक सविदुर्नामकरूपविशेषात्मक व्याप्तरूपबृहत्शरीर शून्याविधकालाविध केवलाविध ब्रह्माविधानन्दाविध रूपविशेषात्मक निरूपचरितमूलरूप निरूपचरित व्याप्ताप्रतिबद्ध अनन्ततेजपुञ्ज तादृशरमायुक्तरूपविशेषात्मक गायत्रीभूतवाक् पृथिवीशरीर हृदयभेदेन षड्विधगायत्रीनामक लोकवेदसमीरगमान्तर्गत प्रणमाच्चतुर्यपादोपेद गायत्रीपादचतुष्टय प्रतिपाद्य वैकुण्ठस्थिता अनन्तासनस्थिता श्वेतद्वीपस्थिता सर्वजीवस्थितरूपभेदेन चतुरूपात्मक निरूपचरितसर्ववावर्तप्रतिपादक श्रीदेव्या निर्मारूपाष्टक अभिमन्यमानचक्रशङ्खवराभययुक्त हस्तचतुष्टयोपेद प्रदीपवर्ण सर्वावरणभूषित विश्वादि भगवद्रूपाष्टक प्रतिपादक अकाराद्यष्टाक्षरात्मक श्रीमत्प्रणवाद्यष्ट महामन्त्र प्रतिपाद्य अष्टरूपात्मक मन्त्राध्यायोक्त

जय जय श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड् दर्शनाचार्य वर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टिकला पारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्र किरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्धंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगव समलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्य वर्य सकल यति कुलतिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण दुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सार्वभौम जय जय पराक् स्वामीन् पराक् बहु पराक्।

जय जय श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड् दर्शनाचार्यवर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टिकलापारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्र किरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्धंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगव समलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्यवर्य सकल यति कुलतिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण दुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सार्वभौम जय जय पराक् स्वामीन् पराक् बहु पराक्।

जय जय श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड दर्शनाचार्य वर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टिकला पारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्र किरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्धंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगव समलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्य वर्य सकल यति कुलतिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण दुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ

जय जय श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड् दर्शनाचार्यवर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टि कला पारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्र किरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्धंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगव समलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्यवर्य सकल यति कुलतिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण दुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सार्वभौम जय जय पराक् स्वामीन् पराक् बहु पराक्।

जय जय श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड् दर्शनाचार्य वर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टि कला पारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्र किरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्धंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगवसमलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्य वर्य सकल यति कुल तिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण धुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सार्वभौम जय जय पराक् स्वामीन् पराक् बहु पराक्।